0: ले ये किस नगते पे के डिमांड नहीं गई भेज अब नगले मग में जी कि डिमांड नहीं गई पोजीशन जाता तब क्या मजा हुआ मुझे जुगुन है पीछे तूने तो पोजीशन गाप के मुंह गिरे फॉर एग्जांपल और मसिन दा चेंडा इंगले और अमित के गेट तक तो सनन टू को अमित आवारा मुझे पर ने मन हुरू कन्याता ओ बोतन सागो तैदुती कुपी अलग के जागो कलून जो कुकी मुकु बोती को ने मन चिता ने हुरू कन्याता कुमुई सागो कलून जो कुमुई सागो सैदुती कुकी बोती की बोती दिगा केन्या कुल मारा कोने मारा मुई चिता ने सैदुती आ कोने मन दुका लोसो अमुई गेले बिका तो बिके मे पारा ने की कोने मन हुरू कन्याता कुते रीते मे अमेटा मोने किमी पावारा मुई औ की संपूर्ण हुरू कन्याता लोगों ने कि वाला क्या टूल अगर निश्चित मुई अपन कहाँ की प्रेसिडेंट आ रहा मुई को माय मुई को आ जाएगा टूल निकी में जो को आज कूरा उरु के नाता अब बुकिंग वाला सब दिखा के नाता बिल्कुल कूरा कोई मोटो उतनी ऑप्शन आ रहा मुई है वो आई ट्रांड नाते तो सेम सेम इन 2013 Kuhi buat cungule, amu kita ni macam kau sebut perai laut dinga. Kuhi buat kita seorang yang nyata kalau bumi bawa, aku yang nyata ni uru ke perai laut dinga kule, amu kita presiden ni, anjuru bawa. Kaki ni kena nyata. Ibu agama ni, buat kita jenis tiga Kenya, aku esok lewat ni sah presiden ni marah buto. Kuhi kita kira kita jenis tora in 2022 uru ke nyata. Kuhi mau lagi tiga Kenya. Aku kau cerita kan neter, amu historia juga kita tinggi, amu jauh mau muri juga tu sah sah gesugun ni, sah? Kau kita kau tuh kia kau tuh lewat sih, kau tuh tahu nanti kau miuru kau miuru minta rai lau dinga, kau minta kau ni, kau kita macam tu muda sama kita miuru rai lau dinga, kita macam kita kau minta kau ni, kau kita sih tuh muda sih tuh semua sama tuh nanti, lagi macam kau ni mahal kau kita tuh jemput kau ni tuh mahal mana sih? Oba kita, oba susu yang kita tukar ni tiga banyak. Agil lekik tak kita siap. Agil berkurang, agil ni kita makan ni. The same historia aku betin gay. Biar di nanti tu posisi ni, aku mau bicara berbeza. Biar orang yang awam nak kulit dah. Ingin tu buka awak kah kah gila aja. Uya muka kosim.
1: Kamu yang
0: awam berjual le. Awam nak kita kerja gongkan gule. Ia mungkin buka pos tu tu gue kageng ke. Uji saja dah. Naga masih, kamu mau sulai. Arah mau jalan jauh gim. Biar di nanti tu posisi ni. Kemudian dari tadi, amunnya kan ada one day one time. Lalu kamu masih itu kian sempurna.
1: Marah
0: kami sokai tangan dari kata kasih aku. Yuk, untuk bumi biju. Aku mau pulang peara. Kamu tuh mau pulang peara. Aku rayu dulu, rayu dulu no. Kamu mau kikir gua orang sedikit bawa lincin. Mau luar lah. Kau gil dia berasa dene. Kau jika sedikit apa? Aku gil dia kandu kini bau nanti tinggi geluan. Kau jadi kau